जसो ल नेपाल भाषा या ज्याजो नेपाले निने त चुना दिपि सकल सित दुनु गलन सेन ल सकुस ज्याजो सजि रश्मिला प्रजापति छि प्रत्येक मंगलबा हिनस्या पेता ई निसे न्याता ई त क हिना जाय दिगु दु थौ या दि निसे खते थौ नेपाल संबत 1146 गुला थो द्वादशी मंगलवार दक्ले हपांगो मे जीते थे ना ज्याजो नेपाल ऐसा

तुमका हकनाला सकुसे जाजो नेपाले से नेपाले जाजो छिंगे ना चुना दिला जाजो नापदे गुड लाइफ बिस्किट्स जुगना खरश मिला जाजो ससिक पिसा शुगु खाए खा ठुके जिसा जाय निवा सुसा बुखा त तेगु अले निवा मे त ह्या के गु याना वइचुना गु खा अवे क्रमे जि हकनो मे गु बुखा ते देना थो बुखा दासा थैती मानंदर गुथिया बुखा ख थैती मानंदर गुथिया हना जाजो या बारे बुखा थैती मानंदर गुथियार समाज बुखिया त थहिती मानंदर गुथी धारा धागु या थपिनिगु नासा पुजाया विशेष हना ज्याझो यासे कोचाला गुथिया नायोलिसे केन्द्रीय मानंदर संज्ञानी वर्तमान सभापति नारायणदास मानंदरिया सभापति तुजुगु उगु ज्याझोले थिति व्यक्ति पिन्त हनिगु जान जुगु ख कोरोना काले सी गुथिए दि ढुंगुगु गुथि हकनो पुनर्जीवित याना गुथिया त चला मान याना दिपी सी गुथिया च्याम दुज गुथिया त दशको निसे मध्यक सरसल्लाह बिया बना छुना दिम गुथिया उपाध्यक्ष द्वय लक्ष्मीदास मानंदर प्राध्यापक डॉक्टर त्रिरत्न मानंदर व गुथिया आर्थिक एवं सामाजिक रूपा ग्वाली याना छुना याना वया छुम गुथिया दुजले से ये महानगर पालिका या प्रवक्ता एवं सत्र वडा अध्यक्ष नवीन मानंदर लिसे केन्द्रीय मानंदर संगे निर्वाचित पदाधिकारी बिन्द विशेष हनिजा यागु ख अथे ज्याझोले गुथिया सांस्कृतिक खेले चुना गुथिया दाफा भजन व बाजने विशेष योगदान दिन दिपी केन्द्रीय मानन्दर संघीया बुधिया लस्त्याजुगु थिति कासा सांस्कृतिक ज्याझोले शिर्पा त्याका दिपी गुथिया दुजा पिन्त खेस ग व हनापो बिया हनिजान यागु ख जस आख्नो जी मेगो बुख स्वातेना खला बुख चाहिँ यको हेदु आजै जितो बुख सिमेन सुतजलो तला दिना चंगु सम्यक न्याके त साक्य महाविहार संघ नेचिलेगु जुगुदु साक्य महाविहार संघ या झिन छकोगु स्थापना दिवस या लस्त्या आइतबार छगु ज्याझोजुल संघ या नाय शुभकाजी साक्य या सभा नाय सुई जुगु उगु ज्याझोले संघ या मु छान्जे संघ रत्न साक्य लस्कु स्यासे मु नुग ख तया दिल थोहे झोले वेकल साक्य वंश या उदय लिसे कया थौ या अवस्था साक्य तेगु स्थिति बारे न खन्य थना दिल अले संघ निसोने ढुङ्गा ये दुने साक्य समुदाय पाखे जुई मागु आपाल ज्या यानगु ख कन दिल ज्याझोले संघ या कानुनी सल्लाहकार ज्ञान रत्न साक्य छगु इले साक्य समुदाय या स्थान तत्सक चुएला नचुङ्गु ख सलिपावना थिथि शासक तेगु पाले वो स्थान म जुया वङ्गु ख धया दिल ज्याझोले नोकुपी अमिर मान साक्य गौतम रत्न साक्य पिन्स महाविहार संघ या थिथि पक्ष या खन निभया दिल सबनाय शुभ काजी साक्य थोस संघ नि सोने ढुङ्गा दे दश पञ्चदा ज्याझो व तद निहनिसे दिना चुङ्गु बरे भे यानगु खकना दिसे थोके साक्य समुदाय मुनु त थव थवे परिचित ज्वित गुहाली जुगु व संगठित ज्वित गुहाली जुगु ख कना दिल थोए झोले ये सम्यक दान पर्व न दिना चुङ्गु ख वाचाका छु इ न्ह यया महाबुद्ध बिहारे बचा धङ्गु सम्यक व पञ्चरा ज्याझो झुगु या त उल्लेख यान दिलसा महानगरपालिका या गुहाली थुक्से घ्याजाको सहनु खुनु तजिक सम्यक महादेव पर्व चुइगु गोसा गोया चुङ्गु व उखि साक्य महाविहार सङ्घ सक्रिय रूप जुया चुङ्गु खन कन दिल ज्याझो सह मेमे गुण बुख त पक्का नदु आफ्नो मेगो बुख पाख्यो हुन्थेना तो चाहिँ गुला धर्म यो बाख जल स्वयम्बी परम्परागत बाजाले चाहिँ पूजा आजा सुरु जुगुदु स्वयम्बी मधुपी थतिथि पिन्त पिनेगु लुमन्ती विशेष पूजा आजा यागु धार्मिक ज्याझो त जुया चङ्गुदु दक्षिया दुने मधुपी थतिथि पिनेगु लुमन्ती बौद्ध मार्गी पिन्स परम्परागत बाजाले चाहिँ स्वयम्बी पूजा आजा यागु याना चङ्गुदु श्रावणीया नापाङ्गु पूर्णिमा निसे भाद्रया नापाङ्गु पूर्णिमा त कन्याकीगु गुला पर्व या झोले सोनिगया भक्तजन पिन्स स्वयम्भू महाचैत्य परिक्रमा याना विधिपूर्वक पूजा यागु याई अले नेपाल सम्बत या गुङ्गुगु लाकथ गुला पर्व या त पुण्य सञ्चय यागु पवित्र लाकथ लक्षित तक हनेगु याई गु या अर्थ पुण्य देखेगु व ला या अर्थ महिना ख गुला पर्व बुधिकाइपी भक्तजन पिन्स धार्मिक ज्या याना पुण्य सञ्चय यागु व थौ क्षमता कथ दान यागु परम्परा दु थ अवधि जीवन या त शुद्ध व सदाचार या त थिथि नियम पालना यही लक्षितक धर्म अनुयायी पिन्स पशु या त नोक्सान मयागु म बिगु सामानका मते मुख ल्यामते लागुवास व एला सेवन मयागु तजागु खाता म दिनेगु मनोरञ्जन मयागु इले हे नेगु अले तिसा वस म पुनेगु ब्रह्मचर्य पालना यागु थिजागु अनुशासन
पालनायै स्वयंभू व्यवस्थापन व संरक्षण महासमिति स्वयंभू व जखया लागा सुचुकुचु यासि रंगतेगु मतजडान याना लक्ष्यंक जुगु गुला पर्वया गोसा गुएगु ज्या यागु महासमिति दुज राजु लामा जानकारी बियादिगु दु वे कया कथा सुनि गय तिथि थासा भक्तजन पि बाजन थाना स्वयंभू भया पूजा यागु व पूजा लिपा ग चाहिलेगु यही तो गचाइलिगु चिपै गुलि साइदिया ख आज पनि चाहिँ नपा जिमिगु छ मरिजु भले सिधे सिधे लछि अंकन गुला भले चाहिँ तस्क गुला लछि भने न अले गुला लछि आउ भले चाहिँ बाजा थाई पिन दु तर आथे यो कोमर बाजा थाई पिन मोए तर मनो त चाहिँ मो मोए मला 3-4 बजे चाहिँ जिमो ठ्याके मरि बोल्ने लागु छ ज्या 3-4 बजे चाहिँ चहल पहल सुरु छ तर जिमिदा छ 5 बजे थि मने गुसे याना आज अब टुटेजुला तापक तापक लाट मलाई तर न गुलाबले छनु न छनु चाहिँ थिङ्कमा धैको चाहिँ छौ दुनी अझको विश्वास चाहिँ मको तर अझको छौ दुनी अब सिमरेको छौ चलन थिए चाहिँ ढुका यसै वो चलन चाहिँ जी आतफल निर्वा याना सुना गएहरू छिप्पेना चाहिँ दिशा विशेष याना गुलाबले स्वयं विस्तुते चाहे चाहे दिल रहेछ अनि यो लु एकदमै फरक जुस एकदमै बिस्क लु छि होइन सेखरी दासी जाजु साखमा जी मेरो विश्वास थिएन